आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार

0: भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चंद्रमुखी दिसते अशी तुझी माझी ही जोड़ी गगित किती छान।

0: नाही।
1: दुपारची वेळ रटाळ कंटाळवाणी वाटते, मग या वेळेत रिफ्रेशिंग इंटरेस्टिंग असं काही करायचं।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में

0: बीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जन नायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट ना होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन।

0: है, भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
0: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
1: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरु मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, यह आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाए। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाए। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Kerala. Hung assembly in Tamil Nadu. TVK

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव यानी कि 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर डीआरएम पे भी सुन सकते हो, और साथ ही साथ जहां कहीं भी होते हो बस न्यूज ऑन एआईआर ऐप तो है ही आपके फोन में, जिससे कि स्ट्रीम भी कर सकते हो। तो एकदम लाइव आपके साथ रहेंगे, जहां कहीं भी होगे दुनिया के किसी भी कोने में, बस इंटरनेट की जरूरत है। और अगर रेडियो पे सुन रहे हो तो 107.1 आपको तो पता ही है, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे, आपकी दोस्त मृण्मयी मनजा। 8:40 हो रहे यानी कि मस्त मुंबई मुंबई का मस्त होने का समय आ चुका है। वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, और जब ऐसा कुछ होता है तो मंगलवार का दिन है तो सब मंगल मंगल हो, इसी की कामना के साथ बप्पा को बुला लेते हैं।

0: अभी थोड़ी देर में आपके पास आएगा मोरिया रे डॉन से।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मंगलवार के दिन डॉन का गाना सुन रहे हो, शंकर महादेवन की आवाज, जावेद अख्तर के लिरिक्स।
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मुंबई का सबसे पहला एफएम चैनल।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: सुजाता लिखती हैं, संकष्टी चतुर्थी है आज, अंगारक संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको भी। हमें प्रकाश और प्रणव ने भी मैसेज किया हुआ है और जाहिर सी बात है इसीलिए तो पप्पा के गाने, जैसे कि आपने भी लिखा है कि मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। दिन की शुरुआत वैसे थोड़ा सा ऐसे विघ्न को बाय बाय बोल के ही मंगल मंगल कर सकते हैं जीवन को, है ना। बांजो का गाना वैसे सुन रहे थे, विशाल डडलानी, अमिताभ भट्टाचार्य, विशाल शेखर का म्यूजिक। हम है म्यूजिकली योर्स, एफएम रेनबो मुंबई, और इस वक्त सुन रहे हो मस्त मुंबई। और क्योंकि आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आज की थीम आपको पता ही है, कल आज और कल होता है मस्त मुंबई में। यानी कि हम बहुत सारी बातें करते हैं मुंबई शहर के बारे में, त्योहारों के बारे में, फिल्मी दुनिया, सितारे और महाराष्ट्र के संस्कृति के बारे में भी। तो फिर संकष्टी चतुर्थी के बारे में कैसे नहीं बात करें, है ना। आज वैसे भी गणेश जी का दिन है और आप सब बहुत प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। और अगर इस वक्त सिद्धि विनायक के पास हो, दातर में हो, तो ट्रैफिक मिला आपको या नहीं?

0: वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ सकता है कुछ 10 मिनट के करीब। अग्निपथ का ये गाना सुन रहे हो, अमिताभ भट्टाचार्य अजय अतुल का म्यूजिक है और अग्निपथ पे तो हम सब लोग चल ही रहे होते हैं। सुन रहे हो इस वक्त 107.1 FM रेनबो मुंबई। प्रोग्राम का नाम है मस्त मुंबई और सुबोधा ने इस वक्त तो हमें पुणे का हालचाल भी भेजा हुआ है कि गणपति के वजह से आज तो बहुत लंबी ट्रैफिक रहती है वहां पे। आप कैसे हो मुझे बताओ, 8657661071 पर 8657661071।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आज बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं, जैसे कि आप मुझे पूछ ही रहे थे। तो बस कैसे हो, क्या हाल चाल है, ये मैंने आपको पूछा। ये रघुनाथ ने भी इस वक्त मैसेज किया, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, हम सभी की तरफ से। और सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक के यहाँ दादर में दर्शन लेने के लिए, ओहो। लेकिन अगर इस वक्त आप मेट्रो से जा रहे हो तो थोड़ा अच्छा नहीं हो गया हमारे मुंबई के लिए कि एक स्टॉप तो चलो सिद्धि विनायक हो ही गया, तो वो भी थोड़ी सी आसानी हो गई है। लेकिन आज एक आसानी के साथ साथ आपका एक विघ्न भी होने वाला है, एक परेशानी भी होने वाली है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ना। अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दूंगी। चले, अच्छी चीजें तो बहुत सारी हों, लेकिन कमी हो तो सिर्फ बुरी चीज की, ऐसा हम चाहते हैं पर ऐसा होता नहीं है ना। तो आज वैसे भी बहुत कुछ है, पता है विश्व अस्थमा दिवस भी है, उसके वजह क्या है उस पर भी बात करेंगे। और पानी अगर नहीं बचाया है तो बचा लेना, वो क्यों बताऊंगी।

ये दिल है कि मानता ही नहीं है ना। दिल फिल्म का ये गाना उदित नारायण अनुराधा पौडवाल की आवाजों में सुन रहे हो इस वक्त। समीर के लिरिक्स है और साथ ही साथ ये है मस्त मुंबई। कल आज और कल, जब समय का पहिया घूमता है तो कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, गर्मी, पानी की समस्या और ट्रैफिक। पुणे की बात छिड़ते ही बहुत सारे आप लोग हमें वहां पे भी मैसेज कर रहे हैं, पूरी दुनिया से वैसे सुन ही रहे हो न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए, जहां कहीं भी होते हो वैसे लाइव सुन ही सकते हो हमारे ऐप से। और ठीक इसी प्रकार कैसे हो मैंने पूछा था, तो कहीं हमारे देश के किसी कोने में कांदा यानी कि प्याज निकाले जा रहे हैं खेतों में, उसका भी अपडेट मुझे मिल रहा है। और साथ ही साथ कोई इस वक्त लाइन में खड़ी हैं पानी की बॉटल लेके। तो बिल्कुल इस पानी के बारे में तो मैंने आपसे बात की ही थी कि हाँ गर्मी बहुत है तो अपना ख्याल तो आपको रखना ही है। साथ ही साथ पानी की समस्या, वैसे आज मुंबई में कुछ 30 घंटे के लिए जो पानी बंद किया जाएगा उसके लिए थोड़ा मेंटेनेंस चलने वाला है इस वजह से। तो आपूर्ति अगर बंद होती है तो आज 10 बजे से वो होगा, तो थोड़ा सा पहले से आपको मैंने बता दिया ताकि आप प्यासे तो ना रहें, आपके लबों तक पानी ज़रूर पहुंचे इस गर्मी में, हाइड्रेट होकर ही रहना है। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ों के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है घर में भाई। तो पहले से जब सूचना मिल जाती है, 3-4 दिन पहले अखबारों में कुछ निकला होता है तो इंसान भूल भी जाता है, तो हम है ना।

वनीता।

0: कैरवान फिल्म का ये गाना आशा ताई की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स है और आर डी वर्मन का म्यूजिक सुन रहे हो इस वक्त मस्त मुंबई 107.1 FM पर। और कल आज और कल ये समस्याएं हमेशा समय के पहिए की तरह घूमती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वापस आ जाती हैं। वो भी देखो मुंबई जैसे शहर के लिए, जहाँ जिसके इतिहास में इतने सारे लोग होते हैं कि पानी सच में बहुत ही कीमती चीज़ हो जाती है, और वहीं पानी बचाना कहीं ना कहीं सब भूल ही जाते हैं, है ना?
1: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वो क्या है ना, 1800 मिलीमीटर लंबी नई जल सुरंग को जोड़ने के लिए ये व्यवधान जो है आवश्यक है, जिससे कि मुंबई शहर के दीर्घकालीन आपूर्ति नेटवर्क में सुधार होगा। और इसीलिए ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो जाएगा सारे जगहों पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 5 मई की खबर थी कि 5 मई सुबह 10 बजे से 6 मई शाम को 4 बजे तक ये कहाँ कहाँ होने वाला है। तो प्राथमिक अगर मैं आपको बताऊं तो पूर्ण रूप से मध्य और पश्चिम वार्ड की तरफ, यानी चेंबूर तिलक नगर इस तरफ, उत्तरी वार्ड यानी कि घाटकोपर विद्या विहार विक्रोली, मध्य और उत्तर वार्ड की बात करें तो वडाला प्रतीक्षा नगर शास्त्री नगर। तो 6 मई तक यानी कि अभी से शुरू होके तो परेल सेवरी है, कुरला है, गोवंडी और मानखुर्द। अगर आप भी यहीं कहीं रहते हैं तो ज़रा सा अपना मतलब रख लें, नहीं तो पानी तो आपको पता ही है कितनी कीमती है। आज वैसे बहुत सारी कीमती चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ जल थोड़ी है, वायु भी है।

जिनकी गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, उनके ऐसे ही अरमान होते हैं कि बस समय पर दफ्तर ही पहुंच जाए। नहीं, वीकडे पे क्या ही सोचेंगे, है ना, थोड़ी सी ठंडी हवा, सांस कहीं से मिल जाए। उषा उत्तप की आइकॉनिक आवाज, हिंदी वर के लिरिक्स और बप्पी लहरी का म्यूजिक सुन रहे थे इस वक्त मस्त मुंबई में अपनी आरजे मृन्मयी मनाजा के साथ।

0: सांस की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि अस्थमा दिवस, जैसे कि हम बात कर लेते हैं ना कि सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हमें लगता है बहुत बड़ा सा कुछ है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से बीमारी होगी तब जाके आपको दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे लोगों को अचानक से भी आ सकती है, और इनके कई तरह के जो है वजह भी हो सकते हैं। और कल, आज और कल देखें, पुराने कल में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी जो कि आज हैं। जैसे इनहेलर आजकल बहुत ही आसानी से लोगों को मिलता है, उपलब्ध है, और अत्यंत आवश्यक तो है ही अपने साथ। जैसे अपनी जान से ज़्यादा कीमती फ़ोन को लेके घूमते हैं, जिन्हें भी समस्या है अपनी इन चीज़ों को कभी गलती से भी ना भूलें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इसी के हाथ है, सांस इसी के हाथ है। साथ ही साथ कल, आज और कल देखें तो जैसे पुराने ज़माने में हमारी इसी मुंबई में खुली खिड़कियों के साथ कम धूल हुआ करता था, आज इतना प्रदूषण है कि सील्ड वाली घर सब बंद होता है, एसी होता है, फिर भी सांस लेने में कभी कभी दिक्कतें आती है ना।
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

0: कभी नांदगांव तो कभी दादर तो कभी देश के बाहर ले जाए मुझे आकाशवाणी यानी हवाएं न जाने का। जब हैरी मेट सेजल का ये गाना सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में इरशाद कामिल और प्रीतम।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों

0: के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू। शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
4: आई एम माधुरी दीक्षित एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन FM रेनबो।
5: हाय आई एम कबीर बेदी एंड यू आर लिसनिंग टू FM रेनबो चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।
6: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीनो मुरिया और आप सुन रहे हैं 107.1 रेनबो FM फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो।

आशिकी सांसों से ऐसे हुई कि क्या करे। फिल्म का नाम आशिकी, कुमार सानू और समीर के लिरिक्स हुए थे नदीम श्रवण का म्यूजिक। एंजॉय कर रहे थे हम हैं म्यूजिकली योर्स 107.1 एफएम रेनबो मुंबई। सांसों की जरूरत के बारे में जो बातें चल रही हैं वो पता है क्यों चल रही है, जो अभी अभी जुड़े हैं। विश्व अस्थमा दिवस आज है, पहले मंगलवार को होता ही है मई के महीने में। तो देखे कल आज और कल ये तो नहीं बदला कि चलो कुछ जागरूकता फैला दी जाए, लेकिन सच में जब अपने ऊपर बीतती है ना तब पता चलता है। आमतौर पे ये शब्द हमने सुना तो होता है पर किसी को नहीं पता होता कि करना क्या है। और सबसे ज्यादा दिक्कत पता है तब हो जाती है जब आप इनहेलर वाली स्थिति तक पहुंचे भी नहीं होते हो और बीच में कहीं अटके होते हो तो वो भी है, डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। बोलते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, खुद ही देखभाल नहीं करती हूं मैं और नहीं, लेकिन किसी को, किसी ना किसी दोस्त को तो याद दिलाना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना एक दूसरे का सहारा हम बन जाएं, वो तो कर ही सकते हैं। और इस साल की पता है थीम क्या है, एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स सबके लिए। और ये अभी भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, यानी कि जो अस्थमा से पीड़ित होता है ना सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता अभी भी अत्यावश्यक वाली आवश्यकता है, क्योंकि इलाज से कई सारी जानें बच सकती हैं। जैसे कि आपने भी कहा, मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ रही हूँ जो आपने लिखा है कि एलर्जी की वजह से होता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों से ना एलर्जी होती है, वो धूल के कण हो सकते हैं, पालतू जानवरों के बाल भी हो सकते हैं, और जो वायु प्रदूषण है वो तो ऊंचाइयों पे है। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है कि चलो डस्ट है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे शहर की कोई सिर्फ असुविधा है, ऐसा नहीं है, हर जगह हो रहा है। तो अब देखिए ना, अभी अभी आपने डस्टिंग की होती है, कल रात की बात है, बस ऐसी जाली वाली खिड़की बस थोड़ा सा अलग कर रही थी, मच्छर वाला जो बचने वाला नहीं होता, बस मुझे क्या पता था, अभी अभी तो साफ किया था, इतना धूल जम चुका था कि बस फाइन डस्ट पार्टिकल्स जिससे इरिटेट होता है ना, उफ फैल गए एकदम, तो बस छींकते रहो उसके बाद। लेकिन ये जो सूजन होती है इसी वजह से हमारी सांस में जब तक है जान जब तक है जान का गाना आ रहा है आपके पास 9:40।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजें।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

बिल्कुल, मैं भी खुश हूँ आपके साथ कि चलिए जानकारी आपको अच्छी लगी। सभी के मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं 865-7-6-6-1-0-7-1 पर 865-766-1071। तो व्हाट्सएप पर तो आप लोग मैसेजेस कर ही रहे हैं पानी के बारे में भी कि चले टंकी भरी हुई है तो अच्छी बात होती है ना, पानी की समस्या जितनी भी हो अगर अपने पास बचा हुआ पानी रहता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये तो हम अस्थमा के बारे में बात कर ही रहे थे कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं जो इसका कारण हो सकती हैं। जैसे कि कल आज और कल कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदलती, मैं देख के सोच ही रही थी कि ऐसा क्यों है। भावनात्मक तनाव, अब ये तो चले हमेशा रहेगा ही, पर बहुत ज़ोर से हंसना रोना तनाव में रहना ये नहीं करना है। वैसे हंसने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हंसेंगे तो फिर तनाव तो दूर हो ही जाएगा, है ना। दवाएं और आहार वो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन वही हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है प्रोसेस्ड फूड, वो तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाता है। और व्यायाम जो हमसे होता नहीं वो भी घूम फिर के आ ही जाता है कि मदद करेगा हर छोटी छोटी चीज़ों में से। लेकिन अगर कोई संक्रमण है, जैसे श्वसन संक्रमण है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उसके लिए इलाज की ज़रूरत तो होती ही है। क्योंकि कोई भी प्रकार का संक्रमण हो, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, आपको उससे बचने के लिए, लड़ने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बाकी जो प्रदूषण वाली बातें हैं उससे बचने तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़े से सतर्क रहेंगे तो ठीक रहेंगे, है ना। और अगर खुद ही प्रदूषण कर रहे हो तो देख लेना गाड़ी वाड़ी इमिशन पोल्यूशन सर्टिफिकेट सब है कि नहीं।

0: मोहित चौहान की आवाज में सुन रहे थे इस वक्त रॉक स्टार से ये गाना।
1: हाय, मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
3: आई एम माधुरी दीक्षित एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन FM रेनबो।
4: Hi, I'm Kabir Bedi and you're listening to FM Rainbow Channel of All India Radio. We're an all-time
5: love. Namaste dosto, main hu Dino Murea aur aap sun rahe hain 107.1 Rainbow FM from All India Radio.

धोखा राउंड द कॉर्नर हमेशा होता ही है, पर ये फिल्म का नाम है जिसका गाना सुन रहे हो जुबिन नौटियाल की आवाज में मस्त मुंबई में, और मेरा नाम मृणमयी मनोजा। अभी थोड़ी ही देर में आपको सुनाऊंगी समाचारों के अपडेट 2 मिनट्स के, और उसके बाद होगा नमस्ते भारत हमेशा की तरह।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 293 में से 206 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई और ममता बनर्जी दोनों सीटों से हार गईं। तमिलनाडु में विजय की तमिलगा वेत्री कसगम 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। असम में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि पुदुचेरी में एनडीए ने 18 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के उपचुनाव में बारामती सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार ने 2,18,969 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करडीले ने 1,40,093 वोटों के साथ जीत हासिल की। अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाई के दावों के बीच हॉर्मुज जलडमरुद्ध मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनकी ये टिप्पणी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले की खबरों के बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसी के साथ समाचार समाप्त।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आकाशवाणी मुंबई केंद्र के एफएम रेनबो चैनल से जुड़ चुके हो। सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी के डीआरएम पर भी सुन सकते हो। साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप आपके फोन में जहां कहीं भी हो ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हो। 107.1 एफएम रेनबो मुंबई। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनजा। मस्त मुंबई में हमारी बातें चल रही थी कई सारी थोड़ी देर में, अब वक्त हो चला है नमस्ते भारत का। और क्योंकि मंगलवार है तो आज की थीम है यानी आज का विषय है, भारत हमको जान से प्यारा है।

त्रिदेव का ये गाना सुन रहे हो इस वक्त, अमित कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के लिरिक्स और सपना मुखर्जी भी साथ। 10:10 हो रहे हैं। नमस्ते भारत में, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनोजा। और कहा था ना बताऊंगी क्या आपका संदेश था। वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसका, लेकिन सुविधा लिखती है अभी सुनो आप सब लोग। तब से हम लोग क्या विश्व दमा दिवस, अस्थमा दिवस है आज 2026। थोड़ा सा हवा और सांस के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? सांस, सांस के बारे में बात कर रहे थे, सांस के बारे में नहीं। लेकिन हाँ, मुझे पता है आज आप लोग का उपवास है। तो सुविधा लिखती है, कल आज और कल में ना थोड़ा सा परिवर्तन आया है मृणमयी। पता है बहू और मैं साथ चलते हैं ना, तो कोई नहीं कहता कि सास है, यकीन ही नहीं करते। तो भाई बहुत ही प्यारा आपका मैसेज, समझने वाले समझ गए। आगे बढ़ते हुए ये गाना आ रहा है आपके पास।

हाथों में हाथ डालकर चल ही रहे हैं इस वक्त नमस्ते भारत में। पूरा भारत, पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से जुड़ा हुआ है हमारे साथ इस वक्त 8657661 पर 8657661071। और हमारी सांस भी हमसे अभी सांस के बारे में सुबह आपका मैसेज बड़ा ही प्यारा था आपकी बात पे। वैसे पंकज ने भी हमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल बहन या सहेली ही लगती होंगी जी जी। लेकिन उसके बाद जो प्रश्न उन्होंने पूछा है कि प्राणायाम करना ज़रूरी है हेल्थ के लिए, तो सांस बिंदी वाला उसके लिए भी चंद्रबिंदु के साथ योगा वॉक करना सुबह सुबह, ये तो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है बिल्कुल। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, योगा को देखिए योग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गया, पूरी दुनिया में उसका इतना रीब्रांडिंग हो चुका है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। लेकिन हम भी मतलब भूल जाते हैं, हम नहीं सीखते, पर सीखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ तक हो सके। और सांस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब वो श्वास नली, जो श्वास प्रक्रिया की बात हो रही थी दमा वाली, उसके लिए हाँ, मतलब आप अपनी सांस से नहीं निपट पाओगे इससे, पर हाँ ऐसा जो भी कर पाए ज़रूर करना चाहिए। व्यायाम की बात हम कर ही रहते, भले ही आप थोड़ा सा मतलब कार्डियोवास्कुलर कुछ कर रहे हो जिम में, या फिर आप योग की तरफ जाएं, या फिर प्राणायाम ही अगर कर पाएं, अनुलोम विलोम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। और अगर कुछ निकलता है रिपोर्ट्स में तो उसके बाद उसको दिखाएं भी तो बस जाँच करने के साथ साथ पानी के बारे में भी आपको बताया था, याद है ना, 10 बजे से आज कल तक ये होने वाला है। तो अगर भी आपके यहाँ धीमा सा प्रेशर आता है या ज़्यादा पानी नहीं आ रहा, तो भी चले हम आपका साथ ज़रूर देंगे। मतलब स्टूडियो में बैठ के क्या ही कर सकती हूँ, गाना सुना सकती हूँ।

दिन तो बहुत सनी है, पानी का पता नहीं। अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाजों के साथ सुन रहे हो यार यार टू का ये गाना नमस्ते भारत में।

10:23 हो रहे हैं और सब लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हो। देख रही हूँ मैं, सबकी मस्ती चल रही है। जब लाइव है, सीधा प्रसारण है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है फ़ोन तो नहीं उठा सकते, लेकिन स्टूडियो की लाइन्स 4515-4132, 4515-4133 फोन्स बहुत आ रहे हैं मुझे पता है। पर सुनो ना, बात ऐसी है कि आज नमस्ते भारत की जो थीम है वो भारत हमको जान से बहुत प्यारा है, तो हमारा जो देश है उसके लिए आज एक बहुत खास दिन है, पता है? तो वो मैं आपको बताती हूँ बस इस गाने के उस पार।

0: पानी है नहीं और बहने की बातें हैं, कुमार क्या कर रहे हैं आप? लिरिक्स है, इन्होंने ही लिखा है, लिरिसिस्ट बोल जो है इनके हैं, शाश्वत सचदेव, रोमी विवेक हरिहरन की आवाज़ों में सुन रहे थे ये गाना उड़ी फिल्म से। तो बस बह चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते 10:30 हो रहे हैं, सुन रहे हो इस वक्त नमस्ते भारत 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृण्मयी मनजा। और आज देश के 7वें राष्ट्रपति यानी ज़ैल सिंह की 110वीं जयंती है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल थे। इस सब के बारे में आपको बताती हूँ थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ FM रेनबो मुंबई पर।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

कहने के लिए सच हम कह तो देते हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है, पर कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती है ना। जैसे हम इस समय हमारे फौजियों के बारे में बात करते हैं या हमारे देश के लिए जिन्होंने जो कुछ भी किया है सबके बारे में। वैसे ये एक मज़े की बात थी कि आज ही के दिन की बात है, इनकी जयंती है, और नए बच्चे जो होते हैं ना, नई पीढ़ी के, कई बार इन्हें पता भी नहीं होता कि भूतपूर्व कौन कौन राष्ट्रपति रह चुके हैं। वैसे देखा भी जाए तो हमें बस ना हमारे अधिकार ही याद रहते हैं संविधान की बात करें तो, और जो भी कर्तव्य होते हैं वो तो सब भूल जाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ा था कि सब कुछ पता होना चाहिए सिविक्स के बारे में, क्या चल रहा होता है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा होता, खास तौर पे अपने देश के बारे में तो होना चाहिए ना पता, पर मुझे भी नहीं पता था। तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, जब जानो तब सवेरा, ऐसा वैसे मेरे घर पे कहते हैं, पर अच्छी बात है। तो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, इनका नाम भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे 7वें राष्ट्रपति थे और सिख समुदाय के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल थे। 1938 यानी कि 1938 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था और इसके लिए उन्हें ना 5 साल जेल हुई थी। तो जो इनके नाम में ये जेल है ना, ये उसके बाद से उन्होंने अपना नाम बदला है। और जो उनके नाम में ज्ञानी है, वो मतलब उनको एक उपाधि दी गई है। उन्होंने इतनी ज़्यादा तालीम हासिल की, इतना पढ़ा, इतना ज्ञान लिया उन्होंने, इस वजह से उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी जो मैं आपको सुना रही हूँ ये है टाइम टू मीट माई फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक सरदार उद्धम फिल्म से।

सिख धर्म ग्रंथों पर गहरा अध्ययन करके उन्होंने ज्ञानी का खिताब तो मतलब उपाधि जो है वो तो पाई, पर बहुत कम लोग पता है ये जानते हैं कि उन्होंने शहीद उधम सिंह के अवशेषों को भारत वापस लाने में भी भूमिका निभाई थी।

भड़क सिंह ने फिर लिखा हुआ है सुखविंदर अल्फाज की आवाज आप सुन रहे हो इस देश मेरे नमस्ते भारत प्रोग्राम है और आज की थीम है भारत हमको जान से प्यारा है। सुबह लक्ष्मी लिखती हैं, हमारा भारत सुजलम सुफलम देश है। भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपका, आप सभी के मैं पढ़ रही हूँ। मुझे पता है फिरोज आपने भेजा है, हमारे जो सबसे पुराने भी हमें सुनने वाले म्यूजिक लवर्स व्हाट्सएप ग्रुप भी इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो आप हैं इस वक्त विजेंद्र हमें बराबर हर एक एक पल पर टिप्पणी भी भेजते जा रहे हैं। और इसी के साथ जैसे जवान और किसान की बात हो रही थी इस गाने में, ठीक उसी तरह हर कोई अपने अपने किरदार में देश के लिए बना हुआ तो है ही, पर कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, है ना। आजकल वैसे अच्छा हो रहा है, कहीं पे भी कूड़ा कचरा देखते हैं तो लोग जाकर बता देते हैं कि ना करो ऐसा, और सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं अच्छा इस्तेमाल इस प्रकार से भी हो रहा है। पर जितना भला हो रहा है उससे ज़्यादा तो लोग अपने देश को ना कहाँ सोचते हैं। जब सार्वजनिक जगह होती है ना उस जगह पे कोई नहीं सोचता कचरे के बारे में आजकल, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं है तो हमारा कर्तव्य, पर एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे तो शायद थोड़ा सा सुधार हो जाए, है ना। रजनीकांत ने भी हमें इस वक्त मैसेज भेजा हुआ है वार्ड वन से, और हमारे पास वैसे तीन रजनीकांत है, आप सभी के मैसेजेस में देख रही हूँ। दादर से बाबा हैं, इंदौर ऑल द वे, वहाँ से भी अजय हैं हमारे साथ, हमारी अंजू वैद्य ही आज गर्ल गैंग, बहुत सारी लड़कियां जो है वैष्णवी से लेकर सभी हमारे साथ इस वक्त हैं। अनीता, बिल्कुल सब कुछ मंगल मंगल हो इसी कामना के साथ।

0: गाजियाबाद की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप लिखती हैं कि मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं कि मैं भारतवासी हूँ। बिल्कुल, वो तो हम सभी करते ही हैं, भारत हमको जान से प्यारा है, लेकिन मेरी जान, ये जो हमारी जान है ना, इसको ज़रा संभाल के भी रखना है। जितने भी हम अच्छे हैं उससे बेहतर बनते जाना है, और जो जो चीज़ें हम

भूल गए हैं जो हमारी ही संस्कृति है, जैसे कि स्वच्छता, जैसे कि चीजें कूड़ेदान में ही फेंकना, दान वहीं पे करना, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। और प्राकृतिक संपत्ति की जो बात होती है, तो समंदर के बारे में तो हमने बात की है, आपको पता ही है रोज मुंबई के बीच इतने साफ होते हैं और कितने फिर खराब होते हैं। पता है कभी कभी बहुत बुरा लगता है जब विदेशी आते हैं और उसके बाद वो साफ करते हैं मुंबई, तो मुंबई कर के लिए अब क्या ही बोलूँ मैं, है ना, हम लोगों की हालत। फिर नहीं, अच्छी बात है कि वो लोग अच्छा करते हैं, बट ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम ना फैलाएं। पर सिविक सेंस आपको पता ही है, पर जहाँ जहाँ कुछ भी अच्छा होता है ना, उससे हम खुशी थोड़ी सी चिराग के खुश हो जाते एकदम। जैसे कि बच्चों की जान बचाने के लिए जैसे एम्बुलेंस अपनी जगह बनाती गई और सारे लोगों ने अचानक से बहुत सारा सिविक सेंस दिखाया, बहुत अच्छा लगता है। और वहीं जब कभी आपातकालीन स्थिति, आपको पता ही है कि ऐसे जो व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह, अगर रुक जाएं तो बहुत दुख होता है। नई पीढ़ी वैसे भी बहुत कुछ कर रही है, कई सारे बच्चे हैं जो कि बाइक्स वगैरह में भी आगे जा जा के रास्ता बनाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए, एक दूसरे की मदद हम करते हैं तभी अच्छा लगता है। फिर ये बहुत सारे पुराने भी आज सारे इकट्ठे हैं, चेंबूर से लेकर हमारी काजल आई हुई हैं इस वक्त, और सभी के मैसेजेस में देख रही हूँ। और साथ ही साथ अगर कोई छूट गया तो मुझे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा धक धक करता है दिल, है ना। लेकिन सांता क्रूज से हमारे महेश हो, जो कि सुबह से हमारे साथ हैं, या फिर जलगांव से आर्यन, आप सभी हैं हमारे साथ। और जो जो मैसेज नहीं भी कर पाए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जैसे कि हितेंद्र ने हमें बहुत ही लंबा सा मैसेज भेजा हुआ है, दुर्गेश है उनके साथ, शिवा हैं, मानस, शेफाली और माधव, गणेश, बिल्कुल हम सब आपके साथ ही हैं। और यहाँ हमारे अनिल जो हैं श्रेय राउत के साथ साथ सुबह से, अभी जाने का वक्त देखो ना एकदम करीब, लेकिन गाने आपके साथ बिल्कुल रहेंगे।

ऑल द वे राजस्थान से भी हमें बहुत ही प्यारा सा एक बनाकर इन्होंने भेजा हुआ है हमारे देश के लिए, मेरा भारत सबसे अलग है, महेंद्र देपन ने, और अपना गांव जिला नागौर भी उन्होंने लिखकर भेजा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात होती है, ऐसे क्या होता है ना, हम अलग अलग गाँव के बारे में भी जान जाते हैं और भारत जो है अलग अलग हिस्सों से जुड़ भी जाता है। और साथ ही साथ किशोर नायक ने भी सुबह से लेकर अभी तक मृण्मयी मनजा जी गुड मॉर्निंग से लेकर हर एक पल आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का। और जो लोग मैसेज नहीं भी कर पाए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जाने का वक्त, थोड़ी देर में आप सुनेंगे 11 बजे के मुख्य समाचार और उसके बाद होगा ब्रेक फ्री। तब तक गाने एंजॉय करते रहें।

वेलकम बैक। 11 बजे के मुख्य समाचार के थांडा के साथ 107.1 एफएम आकाशवाणी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, पौंडेचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। कल शाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम आज दिन की राज्य यात्रा पर बिहार के गया पहुंच रहे हैं और यात्रा 3 दिन की होगी। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिमंडल भी होगा। वियतनाम राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। रिजर्व बैंक ने नागरिकों से कर्ज माफी का झूठा वादा करने वाले फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों से दूर रहने की अपील की है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के कर्ज माफ करने का दावा करने वाले, कर्ज मुक्त होने का प्रमाण पत्र देने का वादा करने वाले और इसके लिए शुल्क वसूलने करने वाले, इन सभी लोगों के लिए धोखाधड़ी के तरीकों को बताया है। आरबीआई ने ऐसे मामलों से सावधान रहने और पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी है। ताशकंद में जारी एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 17 लड़कों की प्रतियोगिता में यश यादव ने 50 किलोग्राम वर्ग में तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदोव को 5-0 से हराया। वहीं करुणा एल्बर्टसन ने 60 किलोग्राम में तजाकिस्तान के अली नजरोव को 4-1 से मात दी है। और इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। इस गली और में दोस्तों आपका स्वागत है। 11:02 हो चुके हैं और टकटक करती हुई घड़ी की का इशारा कर रही है कि अगला कार्यक्रम पेश किया जाए। इससे पहले कि इस कार्यक्रम के

बारे में और गुफ्तगू हो। सबसे पहले एक बड़ा ही एनर्जेटिक ट्रैक आपके समक्ष हाजिर है, क्योंकि इस ट्रैक से जुड़ा हुआ एक खूबसूरत ट्रिविया इस घंटे की शुरुआत में बना रहेगा मेरे साथ, जिसका नाम है के थांडा, ओनली ऑन 107.1 FM।

वेलकम बैक दोस्तों। 11:06 हो चुके हैं और घड़ी की टिक टिक कर रही है इशारा कि आपको बताया जाए इस गाने के बारे में। लेकिन इस गाने से पहले आपको बताना चाहूंगा ब्रेक फ्री खास शो के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वक्त जो है कभी नहीं ठहरता, और 11 बजे का जो इशारा है और इशारा करता है कि ऑफिस में जो फाइलें होती हैं ना, दबी हुई होती हैं, उनके बीच आप दब जाते हो कहीं ना कहीं। ऑफिस का जो एक घंटा दो घंटा निकल चुका होता है, अगर 9 बजे का ऑफिस है, 10 बजे का ऑफिस है, लेकिन लोकल ट्रेन में चौथी सीट की जंग अभी भी जारी है, क्योंकि ये ऑफिस की जो सीट है वो बेशक खाली हो जाए लेकिन ट्रेन की सीट वो खाली नहीं होती है। खैर, आने वाले इस घंटे में हम ब्रेक फ्री के बारे में बात करने वाले हैं और ब्रेक फ्री गानों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक जबरदस्त गाने के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं जो आपने बिल्कुल अभी सुना है, बदतमीज दिल बैनी।

दयाल और शेफ अली की आवाज़ में। इस फिल्म के कोरियोग्राफर जो हैं उन्होंने जब ये स्टेप रणबीर कपूर को बताया तो भाई साहब उनके पसीने छूट गए, मतलब इतना ज़बरदस्त स्टेप था कि ईजिली करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो नॉन डांसर हैं। पर भाई साहब ये बंदा कमाल है, एक ही टेक में आग लगा दी। अगर आपने गाना देखा हो सुना हो तो अगर आप देखेंगे किस तरह की ब्रेक थ्री तरीके से इन्होंने इस फिल्म में काम किया है, काबिले तारीफ है। चाहे वो गाना इलाही हो, चाहे बदतमीज़ दिल हो, चाहे दिलवाली गर्लफ्रेंड हो, या यूं कहूँ कि दिल्ली वाली। फिलहाल इसमें दिलवाली भी थी क्योंकि इसके साथ में जो है थी दीपिका पादुकोण। फिलहाल अगला ट्रैक आपको इसी फिल्म में सुना रहा हूँ, अरिजीत सिंह की आवाज़ में और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। बने रहिए 107.1 FM पर, क्योंकि गानों का तड़का लगता रहेगा बैक टू बैक। और आज हम मनाने वाले हैं आपके साथ में कार्ल मार्क्स का बर्थडे। अब आप कहेंगे भाई साहब कार्ल मार्क्स कहाँ है, हमने तो सुना नहीं। चलिए आज इनके बारे में बात करेंगे। एलन शेपर्ड के बारे में सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, विरार के लोकल के बारे में बात करेंगे। भाई साहब

वेलकम बैक दोस्तों, 11:22 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं बैक टू बैक इसे बढ़कर एक सुपर हिट गाने 107.1 FM पर। मेरा नाम है के थांडा और गाड़ी जो चल रही है ये गानों की, इसके साथ साथ में आपसे बातचीत चलेगी इस घंटे में ब्रेक फ्री में कुछ खास बातों की। आज है कार्ल मार्क्स का बर्थडे, खूबसूरत राइटर हैं और मार्क्स जो है उनके रहे हैं वो। और सबसे बढ़िया बात उनकी ये थी कि उनका मानना था कि भाई साहब जो हर चीज़ है ना उनमें सब समान है, मतलब कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं, सब बराबर है। लेकिन अगर आज की मुंबई की विरार लोकल में वो चढ़ते तो पता चलता कि यहाँ तो भाई साहब सब एक के ऊपर एक है। और इनके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन 1961 में यानी कि 1961 में एलन शेपर्ड ने अंतरिक्ष में 15 मिनट बताए थे। आप खुद सोच के देखो यार कि आप अपने घर से निकले हो, सिग्नल पर अटक गए और अगर आपने 15 मिनट सिग्नल पर निकाल दिए तो भाई साहब हमारी तो प्लानिंग चल जाती है मंगल ग्रह तक पहुंचने की। है परिबंता तो सच है, भाई साहब अंतरिक्ष में पहुंच गया है कि नहीं है। आज हम कुछ और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा ट्रैक आपके समक्ष आने जा रहा है विशाल ददलाने की आवाज़ में और नीति मोहन की आवाज़ में, साथ में होंगे बप्पी दा।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हवा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਵੱਲ ਆਜ ਹੈ 5 ਮਈ ਹਮ ਸਭੀ ਕੋ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੀਏ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ਕਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇਖੀਏ ਫਰੀਡਮ ਕੀ ਜੋ ਫਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਟਲ ਆਫ प्यूबला यानी कि प्यूबला की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना और मेक्सिकन सेना के बीच में जब युद्ध हुआ तो मेक्सिकन सेना ने इस पर जीत हासिल करी और इसीलिए आज के दिन लोग जो हैं मेक्सिको में ये इतिहास के दिन में एक तरह से आज़ादी का दिन मनाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली मेक्सिको का जो स्वतंत्रता दिवस है यानी कि जो फ्रीडम का डे है वो 16 सितंबर होता है लेकिन कई लोग इसे गलत समझ लेते हैं और 5 मई को सोचते हैं कि मेक्सिको का स्वतंत्रता दिवस है। वेल जिसन के अलग अलग तरीके हैं परेड निकलती हैं और वहाँ पे लोकगीत होते हैं संगीत होते हैं और बिल्कुल अलग तरह का जो है माहौल होता है। फिलहाल सिनको दे मायो अगर आप इंडिया में सुनते हैं तो आपको लगता है भाई साहब कोई पिज्ज़ा का नाम है ना, क्योंकि मैक्सिकन पिज्ज़ा जो है बहुत पसंद किया जाता है लेकिन एक्चुअल में ये आज़ादी का जश्न है। चलिए इसी के साथ एक पैपी ट्रैक आपको सुनाता हूँ और ये ट्रैक होने वाला मिक्का पाजी की आवाज़ में बाबू राव मस्त है।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: कॉस्मॉस डिजिटल बँकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित.
2: इंटरनेट बँकिंग,
1: मोबाईल बँकिंग,
2: व्हॉट्सअप बँकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मॉस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए.
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
3: वेलकम बैक दोस्तों. फिलहाल 11:46 हो गए और टिक टिक करती हुई घड़ी की इकाई आपको इशारा कर रही है कि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता. तो आज कई लोगों का बर्थडे भी होगा और बर्थडे के दिन यू नो कई लोग होते हैं भाई साहब जी ना, हर बात पर ना थैंक यू कहने की आदत होती है, सॉरी कहने की आदत होती है. बड़े ही डिसेंट टाइप के लोग होते हैं. अगर आप उन्हें बर्थडे भी विश करोगे ना, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे बहन, या फिर आप कहोगे हैप्पी बर्थडे दोस्तों, कहेंगे थैंक यू आपको भी, सेम टू यू. मतलब इतने ज़्यादा जो है वो ऑफिस कल्चर में रहकर उस तरह के हो चुके हैं. आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो

की लाइफ में हमेशा इस तरह की यस नो वाला बंदा है। 8657661071 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत जल्दी जो है हम इसी तरह के खास शो करने वाले हैं जिसके अंदर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बता सकते हैं कि आपके साथ कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है जिसमें आपको सामने वाले ने बोला हो हैप्पी बर्थडे, या फिर बोला हो इसी तरह से कुछ विश किया और आपने कह दिया हो सेम टू यू। क्योंकि देखिए बर्थडे अगर उनका भी सेम डे है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो भाई साहब फिर तो ये गाना बनता है।

पीपल अंडर फ्लोर, और मैं कहूंगा पीपल हु हैव ट्यून्ड एफएम रेनबो 107.1 एफएम। वक्त हो चला है आपके समक्ष और ही बातें करने का, लेकिन स्वस्थ ये कह रहा है कि फिलहाल अगला ट्रैक आपको फटाफट सुना दूं, क्योंकि 12 बजे आपको सुनाने हैं समाचार और उसके बाद में आपका जो वक्त कटेगा मजेदार कटना चाहिए ना यार, जिंदगी छोटी सी है और गानों की दुनिया बड़ी ही रंगीन है। वैसे सौदन जो है और यह नॉर्दर्न लेन में अगर कभी आप जाएंगे तो लेन तो कभी कभाक होती है, लेकिन नॉर्दर्न लाइट के बारे में आप सुनेंगे तो भाई साहब इस तरह की वहाँ पे आपने अगर लाइटें देखी हों, मतलब अगर आपने कभी भी वीडियोस देखी हों या फिर फोटोज देखी हो नॉर्दर्न लाइट्स की, कभी घूम फिर कर आएँ, क्योंकि अब छुट्टियों का जो वक्त आने वाला है, समर वेकेशन आने वाली है, और भाई साहब वहाँ का नज़ारा ओहो होने वाला है। फिलहाल ओहो करते हुए आपको एक गाना सुनाने जा रहा हूँ, ऋतु पाठक की आवाज़ में, नीरज श्रीधर की आवाज़ में, पप्पा जग जाएगा, और 12 बजे आपको जागने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जागे हुए हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर इस वक्त के मुख्य समाचार के थांडा के साथ। पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते विश्व अर्थव्यवस्था पर दूरगामी गंभीर परिणाम होने की संभावना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने व्यक्त की है। आईएफएम की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि आर्थिक विकास की गति कम होकर 2.5% की रफ्तार पर आ सकती है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की और हमलों की निंदा की। दोनों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कशगम टीवीके ने एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कलंगम को पछाड़ते हुए 108 सीट हासिल की। विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की है। भारत के दो पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने से चित्रों के माध्यम से रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नतालिए ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री वर्ग में विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। और इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है।

0: पुस्तकांचा मी लेखक, आपली मुंबई आणि मुंबईच्या रस्त्यावर पडलेला पायाने सहज उडवलेला दगड ही इतिहासाचं भांडार आहे. या दोन्ही पुस्तकातून आपल्याला मुंबईचा इतिहास उलगडतो, त्याचंच क्रमशः वाचन येत्या 10 मेपासून आकाशवाणी मुंबईच्या FM रेनबोवर सकाळी 7:45 आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आपल्याला ऐकता येईल. आपण अवश्य ऐकावं आणि मुंबईच्या इतिहासाचा आनंद घ्या.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 12:08 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं बैक टू बैक गाने. अगला ट्रैक आपके समक्ष हाजिर हो से पहले बात कर लिया थोड़ी सी गॉसिप की. दोपहर जैसे चढ़ती है ना भाई साहब, भूख तो लगती लगती है, लेकिन पेट से ज्यादा भूख लगती है गॉसिप की. हाँ, और गॉसिप भी वो वाली जो जीवन के अंदर काम में आया, नहीं तो भाई साहब किसी की लाइफ से अपने को क्या पड़ी है ना, है कि नहीं है. फिलहाल आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो है चर्चे चल रहे हैं एक चीज के, AI वर्सेज ह्यूमंस. लोग कह रहे हैं भाई साहब ये जो चर्चा है ना अजीब है यार, यार AI जो है ना यार हमारा काम खा लेगा. हाँ, आज की तारीख में बहुत बातें हो रही ना, अखबारों में आ रहा, न्यूज में आ रहा, सोशल मीडिया पर आ रहा है, लोग कह रहे हैं यार AI और इंसानों में यार भाई ये तो ये हो जाएगा, अगर AI आ गया तो नौकरियां चली जाएंगी, ये वो. तो भाई साहब AI सबका काम कर लेगा, चलिए मान लिया एक बार को, AI मेल भी लिख लेगा ये भी मान लिया है, पर क्या वो पगार कटने पर कैंटीन में जाकर समोसा पाव खाते बॉस की बुराई कर सकता है? नहीं कर सकता है. देखिए AI वो काम तो कर लेगा जो कंप्यूटर पर होता है, शीट बनाना, एक्सेल शीट, लेकिन भाई साहब जो चापलूसी का काम है वो तो समझ रहे हो ना. चलिए गलत ट्रैक आपके समक्ष हाजिर कर रहा हूँ, उससे पहले आप AI के जो मैदान में है मजे की चटकारी लेना शुरू कर दें. ऋतु पाठक की आवाज में आपको अगला गाना सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी समक्ष एक गाना और आने जा रहा है, वो है मोहित चौहान और रेव शेरगिल की आवाज में चमकीले का टाइटल ट्रैक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिल्म्स में से कहूंगा, खूबसूरत फिल्म है दिलजीत दोसांझ की.

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता. लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए. इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू. शर्तें लागू. आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. एनरिचिंग लाइफ.
3: वेलकम बैक दोस्तों. 12:16:33 हो चुके हैं और टिक टिक करती हुई घड़ी कह रही है कि भाई साहब आपको बात बता दी जाए, वो वाली जिसके बारे में मैं आपसे पहले कह रहा था. वेल एआई वर्सेस ह्यूमन के बारे में तो देखिए बात हम जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि पहले तो ये बात होती थी यार कंप्यूटर आएंगे भाई साहब लोगों की नौकरी चली जाएगी, लेकिन अब देखिए नौकरी बढ़ गई है ना. इसी तरह से एआई और इंसान के बीच जो कॉम्पिटिशन हो रहा है उसके बारे में मैंने आपसे अभी बात करी. लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड और चल चुका है द मिनी ट्रेवल के नाम से. मतलब आज ही तारीख में अगर लोग लोनावला तक भी जा रहे हैं भाई साहब 5-5 बैग लेके जा रहे हैं. क्यों जा रहे इतना है? वहां पे हमेशा बसने के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, रील बनाने के लिए जा रहे हैं. कोलैब मिला है. देखिए लड़कियों को तो घूमने का शौक होता है, पर भाई साहब जो लड़के होते हैं ना आजकल उन्हें भी शौक चढ़ा है घूमने का. अच्छी बात है ना, जीवन छोटा था और मजे जो है पूरे हैं. लेकिन यार इसके अंदर एक नए नए तड़के आ रहे हैं. अभी एक नया तड़का आ गया, उसका नाम है वायरल फूड हैक. मतलब इंटरनेट पर गुलाब जामुन चाट वायरल हो रही है. मतलब ठीक है लोकतंत्र है, आप कर सकते हैं जो भी चाहे, पर इसका मतलब ये थोड़ी भाई साहब पेट है कुछ भी मतलब गुलाब जामुन चाट यार सोच के देखो मेरे तो मुंह में

मावा ठंडियाँ छावा। फिलहाल जहाँ तक बात करें हम हैप्पी मदर्स डे की, उसमें तो अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल वक्त वो चला है अगले ट्रैक का। लेकिन अगले ट्रैक के साथ में आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में क्या जो चीज़ें वो ट्रेंडिंग चल रही हैं। देखिए, AI वर्सेस ह्यूमंस के बारे में तो चर्चा गर्म है ही। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि AI का काम तो ठीक है, वो संभाल लेगा एक्सेल शीट वाला, लेकिन भाई साहब जो जी हजूरी का काम आप करते हैं या फिर हम करते हैं, वो कैसे करेगा AI? और जहाँ तक बात करें द मिनी ट्रैवल की, आज की तारीख में मैंने आपसे पहले ही बोला है कि लोनावला हो चाहे कोई भी आजू बाजू वाली जगह हो, आप देखेंगे लोग चार चार ट्रॉली लेके भाई साहब जा रहे हैं। पूछो कहाँ जा रहे हो, हमेशा बसने के लिए जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रील बनाने जा रहे हैं, कोलैब मिल रहे हैं, बस खुश हो रहे हो। चलिए, आपने अभी तक ये ट्रेंड ट्राई किया है जो भी नया चल रहा है इंटरनेट पर, गुलाब जामुन चाट? भाई साहब मैं कह रहा हूँ लोकतांत्रिक जो मामला वो ठीक है, लेकिन पेट का थोड़ा सा ख्याल कर लो यार, है कि नहीं है? फिलहाल हीट वेव अलर्ट के बारे में बात करूंगा। हीट वेव के साथ में याद आया एक हॉट गाने की बात करता हूँ आपसे, जोड़ने वाला सुल्ताना और ज्योति नूरान की आवाज़ है, पटाखा गुड्डी।

वो जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ।

0: to experience similar conditions today. In IPL cricket, host Delhi Capitals will face Chennai Super Kings at Arun Jaitley Stadium this evening. The match will begin at 7:30 this evening. Last night, hosts Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets at Wankhede Stadium. Chasing the target of 229 runs, Mumbai Indians overhauled the score in 18.4 overs at the loss of 4 wickets. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, resulting in injuries to 3 Indian nationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. US and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart. Kamina J. Smith calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ. जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई

0: महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। AIADMK के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। UDF सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता VD सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व KPCC अध्यक्ष रमेश चेन्नितल्ला और वर्तमान KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के CR पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और

0: विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
3: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाले चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
4: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में

दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 जो है म्यूजिकली योर्स, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, जो लेकर आती है अपने साथ बस रेनबो के जैसा ही सुनहरा पिटारा। और आज स्टूडियो में मैं नहीं हूं, बल्कि स्टूडियो में आज एक और भी आवाज गूंजने वाली है मेरे साथ, और वो है,
2: नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आरजे अनूप।
1: तो आरजे अनूप भी है हमारे साथ, और मैं और अनूप मिलकर करने वाले हैं आपके साथ बहुत बहुत बहुत सारी बातें। पर सबसे पहले शाम के ठीक 5:03 का वक्त, और आइए शुरू करते हैं लव यू जिंदगी, वो कार्यक्रम जहां बातें होती हैं जिंदगी की, दिलों की, सुकून की, वो बातें जो हमें एक बार फिर से जिंदगी से प्यार करना सिखाते हैं।
2: क्या बात है अमिता, कितनी खूबसूरती से आपने लव यू जिंदगी का एक सारांश हमारे सारे श्रोताओं को दे दिया।
1: लेकिन अनूप, सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि हमारे लिसनर्स के साथ भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और जैसे कहा जाता है चलती का नाम जिंदगी, मुझे लगता है चलती के साथ साथ सीखने का भी नाम है जिंदगी।
2: क्या बात है, बिल्कुल।

0: कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में वेक अप सिड फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो जो है म्यूजिकली योर्स। और 5:08 का वक्त, कार्यक्रम चल रहा है लव यू जिंदगी और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता और साथ है मेरे आरजे अनूप।
1: बिल्कुल अमिता। और दोस्तों आज हम बात करें लव यू जिंदगी में एक बहुत ही प्यारी सी बात आपके सामने रखने वाले हैं। और जैसा कि नाम है लव यू जिंदगी, कितना प्यारा नाम है ना, लगता है कि जिंदगी को एक जोर से झप्पी दे दे। पर दोस्तों आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब इतने बिजी हो गए कि अपने लिए वक्त निकालना हम सबके लिए जैसे कोई लग्जरी ही बन गया है। क्यों अमिता?
0: एकदम ठीक कहा अनूप आपने। सुबह से रात होती है और न जाने ही यहाँ जिंदगी तमाम होती है। वैसे ये पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, लेकिन हकीकत की बात यही है कि सुबह से रात तक कभी फैमिली के लिए, तो कभी ऑफिस की डेडलाइन, तो कभी सोसाइटी के काम और कभी समाज के प्रेशर में, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, या यूं कहें कि फिर कभी एक्सपेक्टेशंस की दौड़। और इस दौड़ में सबके लिए भागते भागते बस एक इंसान है जो अक्सर पीछे छूट जाता है। और जानते हैं दोस्तों वो कौन है? वो होते हैं हम खुद। खुद को कब पीछे छोड़ा है पता ही नहीं चला।

0: नमस्कार, मी नितीन साळुंखे. अज्ञात मुंबई आणि अज्ञात मुंबई 2 या मुंबईच्या इतिहासावर लिहिलेल्या पुस्तकांचा मी लेखक. आपली मुंबई आणि मुंबईच्या रस्त्यावर पडलेला पायाने सहज उडवलेला दगड ही इतिहासाचं भांडार आहे. या दोन्ही पुस्तकातून आपल्याला मुंबईचा इतिहास उलगडतो, त्याचंच क्रमशः वाचन येत्या 10 मेपासून आकाशवाणी मुंबईच्या FM रेनबोवर सकाळी 7:45 आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आपल्याला ऐकता येईल. आपण अवश्य ऐकावं आणि मुंबईच्या इतिहासाचा आनंद घ्या.
1: वेलकम बैक दोस्तों. आज लव यू जिंदगी में हम बात कर रहे हैं कि कैसे जीवन की इस आपाधापी में, जो एक्सपेक्टेशन से भरी हुई है, कहीं ना कहीं हम एक बोझ के तले दबे हुए हैं. और आप लोग क्या मानते हैं कि जीवन की इस सफ़र में हम सभी किसी ना किसी दिशा में भागते ही रहते हैं, कभी अपने सपनों के पीछे तो कभी अपनों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए. लेकिन क्या कभी इस जीवन के सफ़र में हम खुद का हाथ थाम पाते हैं, खुद अपना साथी बन पाते हैं क्या हम?
2: अनूप, इस बात से ना मुझे एक और बात भी याद आ रही है. एक कोट, बहुत ही खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी, और वो बात कुछ इस तरह से थी दैट इफ यू डोंट एंजॉय योर ओन कंपनी दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ गुड कंपनी. यानी कि अगर आप खुद अपने आप के साथ, जब अगर आपको अपने ही साथ समय बिताना पड़े और आपको लगे कि नहीं नहीं मतलब कैसे, और हमेशा अगर आप किसी ना किसी को तलाशने लगे, किसी साथी को या किसी दोस्त को, या फिर बस आपको कोई व्यक्ति चाहिए.

0: चाहिए या कोई प्रेजेंस चाहिए, किसी और का प्रेजेंस चाहिए, सो दैट मीन्स कि हमें अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत है।
1: एक पंक्ति में कितनी गंभीर और गहरी बात कह दी अमिताभ ने।
0: भाई ये बात तो कही किसी बड़े पुरुष ने, किसी दार्शनिक ने, लेकिन ये बात मुझे भी सच में जच गई। ये बात हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। कई बार अगर हमें शायद आपने अनूप ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों को अकेलेपन से बहुत डर लगता है, या यूं कहें कि उन्हें अपने आप के साथ बिल्कुल वक्त बिताना नहीं होता है, इसीलिए वो ढूंढते रहते हैं सहारा।
1: जी बिल्कुल।
0: सो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी अगर आपको अपने बस अपने आप के साथ ही वक्त बिताने का मौका मिले तो आप क्या उसे इंजॉय कर पाएंगे, या फिर आप भी किसी साथी को या किसी के प्रेजेंस को, अब वो प्रेजेंस किसी का भी हो सकता है, आप तलाश करेंगे या बस अपने साथ समय बिताना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। वैसे अनूप मैं सच कहूँ, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे अपनी कंपनी, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे सच में कई बार अपनी खुद की भी कंपनी बहुत अच्छी लगती है।
1: अमिता आप मानोगे नहीं, मेरे साथ भी सेम टू सेम बात है, क्योंकि मुझे अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जब मैं अपने साथ समय बिताता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही कितने सारे आयाम हैं। मतलब मैं अपने बारे में ही अगर कभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ये भी बहुत अच्छा करता हूँ, ये भी अच्छा करता हूँ, और प्लस शायद से कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र मेरी आँखों के सामने आता है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ में आता है कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए और कहाँ पर शायद मैं पीछे छूट रहा हूँ, या मेरी कुछ थोड़ी सी त्रुटियां जिन्हें हम कहते हैं वो भी मुझे समझ में आती है। तो मोटा मोटी लेकिन मुझे अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छी बात और बहुत बढ़िया बात। और दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी बात भी हम तक पहुंचा सकते हैं 8657661071, यानी कि 8657661071 इस नंबर पर।

0: मोहित चौहान और साथियों की आवाजों में रॉकस्टार फिल्म का ये गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि जैसे अनूप को एक प्रश्न आ गया है कि आखिरकार ये सारी बातें आज हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है लव यू जिंदगी और कार्यक्रम में हम इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन अनूप थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि आखिर अमिता ये सारी बातें करने के पीछे क्या कोई रीज़न है। वैसे अगर दोस्तों आपको भी लग रहा है कि ये सारी बातें आखिर आज क्यों कर रही हूँ मैं, या यूँ कहें कि मैं और अनूप क्यों कर रहे हैं, तो हुआ दरअसल यूँ कि पिछले हफ्ते मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ और बड़े समय से हम ये गेट टुगेदर प्लान कर रहे थे, पर जैसे कि हर बार होता है और मुझे लगता है हर ग्रुप के साथ होता है कि हम प्लान करते हैं पर वो प्लान कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि सब के सब एक साथ आए लेकिन
1: नहीं हो पाता अमिता, वो नहीं हो पाता। और प्लान कर करके आप थक जाओगे, पर किसी के पारिवारिक जीवन की कोई समस्या हो या कार्य काल के दौरान कुछ समस्या आ जाए, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पर नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल यही हो रहा था हमारे साथ भी कि हम सभी का जो टाइम का जो गणित है, समय का जो गणित है, वो कुछ जुड़ ही नहीं पा रहा था। जैसे आपने एकदम सही पहचाना कि कभी किसी के ऑफिस का कोई प्रॉब्लम होता था, कोई अर्जेंट मीटिंग या फिर कोई बहुत ही अर्जेंट प्रेजेंटेशन है तो उस वजह से वो बिजी हैं, या तो फिर कभी कोई घर में किसी के बच्चे के एग्ज़ाम है तो किसी को जाना है, किसी के इन-लॉज आए हुए हैं, और भी न जाने बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे गणित जुड़ाने पड़ते हैं।
1: समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। अभी तक कहीं ना लगता है कि क्या बात कर रहे हो भाई, तुम थोड़ा तो समय निकालो। पर देखिए कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि हम भी किसी चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर हम भी शायद मना कर दें आगे वाले को, पर देखिए कोई चाहते हुए मना नहीं करता ये चीज़, और कुछ ना कुछ हो जाता है।
0: यस, यही बातें हम भी समझ ही रहे थे, पर उसके बाद हमें लगा कि इस तरह से तो हम पोस्टपोन पे पोस्टपोन करते जाएंगे और हमारी मीटिंग और हमारा जो गेट टुगेदर है वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमने आपस में जब एक कॉल पर हम जुड़े थे तो हमने ये निर्णय लिया कि अब एक काम करते हैं, एक डेट, एक तारीख और एक समय निश्चित कर देते हैं, जिसे भी अगर पॉसिबल होगा वो आएगा, और जो नहीं आ पाए तो उनके लिए हम फिर देखेंगे कि फिर कब मिलना पॉसिबल हो पाएगा। इस तरह से हमने सोचा था। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम जो 30 लोगों का ग्रुप है और हमने जब तारीख और समय निश्चित कर दिया था तो उस नियत तारीख और समय पर 30 में से 26 लोग आखिरकार पहुंच गए।
1: क्या बात है।
0: और जानते हैं अनूप, जब मैं भी अपने बाकी दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, बातें कर रही थी ना, तो एक बात जो थी वो मुझे समझ में आ गई कि हम में से बहुत से लोगों को ना, जैसे अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, या फिर हम सही संतुलित डाइट की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस हम सभी को पता है लेकिन फिर भी हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। और रीज़न क्या दिया जाता है कि अरे सुबह उठ करके इतने सारे घर के काम होते हैं और उसके बाद फिर ऑफिस की तैयारी होती है, और उसके बाद जब ऑफिस से आते हैं तो इतना थक जाते हैं फिर और कुछ करने का मन नहीं करता है।
1: तब मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मेरी कहानी ही बता रही
0: हो। अनूप ये तुम्हारी ही नहीं, ये मेरी ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, क्योंकि जिम्मेदारियों की दौड़ में भागते भागते हम सभी को, सच कहूँ तो बस फुर्सत ही नहीं मिलती।

0: आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी, अपनी आरजे दोस्त अमिता और आरजे अनूप के साथ.
2: जी दोस्तों, अभी अभी एक यूट्यूब वीडियो मैंने देखा जिसमें बताया कि कैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि आज हमने ऑफिस में बहुत काम किया, 10 प्रेजेंटेशन बनाए, 2 मीटिंगें की, तो आज का दिन बड़ा ही प्रोडक्टिव रहा. पर वही अगर हम कभी कह दें कि आज मैं दिन भर सुबह दोस्तों के साथ बाहर था, आज क्रिकेट खेला, कोई फिल्म देखी, तो आज का दिन यार मैंने कुछ किया नहीं, मैंने आज वेस्ट कर दिया आज का दिन. पर ऐसा नहीं होता है. हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति पूरे दिन सबके लिए जीता है, उसे खुद भी कभी अपने लिए जीना बहुत जरूरी है. दिन भर की भागदौड़, डेडलाइंस, थकान, जिम्मेदारियां, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल, कॉलेज, असाइनमेंट्स, कोचिंग का प्रेशर और कितनी अनकही बातें, यह सब धीरे धीरे हमें अंदर से खाली करने लगते हैं.
1: ठीक है अनूप. और ऐसे में अगर जैसे आपने कहा कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने को कहीं ना कहीं हमारे मन की कंडीशनिंग ऐसे कर दी जाती है कि अगर आपने अपने लिए जिया तो यानी कि वो दिन वेस्ट किया या वो टाइम वेस्ट किया. लेकिन अगर कहूँ कि कई बार ये जो शिकायत होती है ना सबको कि भाई बिल्कुल समय ही नहीं है, या तो जो ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस से काम है, और जो घर पर भी हैं, भाई घर पर अपने आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, या यूँ कहूँ कि 24/7 वाला वो जॉब होता है. और ऐसे में अगर फिर भी आपको लगे दोस्तों कि आपके पास समय नहीं है, तो कभी बस 10 मिनट का ही समय है ना, खुद के लिए निकाल करके देखिए. ये वेस्ट नहीं होगा, ये एक्चुअली आपके लिए एक रिचार्ज की तरह काम करेगा. ठीक उसी तरह से जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब धीरे धीरे कम होने लगती है और जैसे ही 50% के नीचे आ जाए अनूप, तो बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कने तेज़ हो जाती है. वो बस देखने लगते हैं कि भाई चार्जिंग पॉइंट उन्हें कहाँ मिलेगा. लेकिन क्या हमारे मन की जब बैटरी यूँ ख़त्म होने लगती है, क्या उसका हमने कभी कोई मानक सेट किया है?
2: और अमिता, मुझे लगता है कि हर इंसान का रिचार्ज जो आपने कहता है वो बहुत अलग अलग होता है, और वो अलग अलग तरीके से अपने आप को कैसे रिचार्ज करे, यही आज के हमारे शो में हम उनसे कह रहे हैं कि लव यू जिंदगी है दोस्त, अपने आप को जानिए, अपने लिए समय निकालिए, और आपको जो पसंद है 10 मिनट वो तो कीजिए.
1: बिल्कुल. और हमने थोड़ी देर पहले एक और सवाल भी पूछा था अनूप कि क्या आपको अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और उनके जवाब भी हम तक पहुंचे हैं. फिलहाल तो गुड इवनिंग कहा है और नमस्कार कहा है शुभदा ने, और साथ ही साथ ये एक और नमस्कार आया है मंजरी पाटिल का, और शुभदा ने भी कॉफ़ी की फ़ोटो भेजी है. कॉफ़ी किसी ने नहीं भेजी है और ना ही चाय, बिकॉज स्टूडियो में बिल्कुल अलाउड नहीं है. और श्रीधरन बालचंद्रन भी लिखते हैं भाई सुंदर शाम टू अमिता. अच्छा, जैसे हम गुड इवनिंग कहते हैं तो उन्होंने हिंदी में ये सुंदर शाम कहा है, और साथ ही साथ अनूप आपको भी उन्होंने गुड इवनिंग लिखा है. अरविंद कुलकर्णी का भी मैसेज आया है, लिखते हैं वेलकम एंड गुड इवनिंग. और मिलेश गजानन राउत वाडवन से, श्रेय मिलेश, आर्य मिलेश राव टिगरेपाड़ा से, उनका भी मैसेज आया है. विजेंद्र घटोल लिखते हैं कि भाई आप लोग जो बातें कर रहे हैं आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में वो बहुत अच्छी लग रही है. प्रणव शिंदे लिखते हैं कि भाई मैं अकेला रहना पसंद करूंगा, लेकिन आकाशवाणी FM रेनबो साथ होना चाहिए, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट FM रेनबो. वेल दैट्स सो स्वीट. पर हम चाहेंगे प्रणव कि आप कभी बस FM रेनबो के बिना भी एक बार खुद अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखिए और फिर हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको. वहीं दत्तात्रेय आड़त वेलापुर से लिखते हैं कि मुझे अकेले ही अच्छा लगता है, अपने आप के अंतर मन से बात करने का मज़ा और आनंद मुझे मिलता है, और अब थोड़ी थोड़ी उसकी आदत सी हो गई है. वहीं अशोक पाटिल लिखते हैं कि every time positive things, not negative things. Yes, I am very time, every time happy. Okay, very good. वही दीपा पालकर भी लिखती हैं कि भाई मुझे खुद के साथ अच्छी लगती है, इसीलिए कि मैं खुद की कमियां उस वक्त ढूंढ पाती हूँ और उसमें अच्छे बदलाव लेकर आ पाती हूँ. दूसरों की जैसे कि आप सभी के साथ अच्छी इसलिए भी लगती है कि आप अच्छी अच्छी और क्वालिटी टाइम मैं बिता सकूँ. सो दीपा पालकर को भी अपने साथ अच्छा लगता है. वहीं हमारे साथ जुड़े हैं रजनीकांत

0: पाटिल, पंकज मोहोड़ का भी आ गया है और संजय पाटिल का भी मैसेज आ गया है। वहीं प्रणव शिंदे का भी एक बार फिर से मैसेज आ गया है, वो हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम के बाद। फिरोज सिगनपुरिया लिखते हैं, भाई इंजॉयिंग योर प्रोग्राम वेरी मच एंड ऑल्सो योर जुगलबंदी, सो थैंक यू सो मच फिरोज सिगनपुरिया। एंड और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन उन्हें हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं
1: अमिता? एक बस मन की बात मेरी ये है कि कितना अच्छा लगता है जब हमारे सारे लिसनर्स हमें इस प्रकार के मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनके जो इतने प्यारे मैसेजेस होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो शो है उनके दिलों को छू रहा है और उनके जो मैसेजेस हैं उनसे कहीं ना कहीं हम भी रिचार्ज हो रहे हैं। तो ये आदान प्रदान ऑफ एनर्जी और पॉजिटिविटी ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
0: बिल्कुल, और जैसे अनुप आपने कहा था कि हर एक का रिचार्ज होने का जो ढंग होता है वो अलग अलग होता है। कोई चाहता है कि भाई वो जाए बाहर गार्डन में बैठे या प्रकृति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, वहीं कोई होता है जिसे संगीत के साथ रिचार्ज होने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई होता है जो बस एक वॉक पर भी चला जाए तो भी अच्छी तरह से रिचार्ज होकर के लौटता है, और कोई होता है जो FM रेनबो के साथ जुड़ा होता है और अपने पसंद के गाने सुन रहा होता है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हम सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा गाना।

0: जावेद अली और साथियों की आवाजों में आक्रोश फिल्म का ये गीत। और एक सवाल अनूप मुझे आपसे पूछना है।
1: क्या?
0: तो सवाल बड़ा ही आसान सा है। वैसे एक बात बताइए कि आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो आपको कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा।
0: और अभी तक का सबसे, मतलब एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल, लेकिन अभी तक का सबसे एकदम, एक होता है ना सरप्राइजिंगली प्लेजेंट गिफ्ट, क्या रहा?
1: मेरी एक मित्र ने मुझे साइकिल गिफ्ट की थी।
0: और
1: मेरे लिए वो लम्हा बहुत यादगार था।
0: क्या बात है। वैसे अनूप और आप सभी दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि बातें कुछ और हो रही थी और ये अचानक से मैंने गिफ्ट वाली बात क्यों
1: हाँ क्यों मैं भी ताजुब कर रहा हूँ कि अचानक ये बात कहाँ से आ गई।
0: तो बहुत ही आसान सी बात है अनूप, कि जब आपके लिए किसी ने समय निकाला, किसी ने आपके लिए गिफ्ट लिया तो आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हम खुद अपने साथ वो करते हैं?
1: सोचने वाली बात है। काफ़ी काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी काफ़ी गंभीर बात भी है कहीं ना कहीं। ये कितनी प्यारी बात कह दी आपने।
0: बातें मतलब मेरा एक बहुत ही प्यारा सा, यूँ कहूँ कि मेरे दिल के एक बहुत ही करीब एक पंक्ति है कि जीवन जो है ना वो बहुत ही सुंदर, सरल और सहज होता है। पर बात यह है कि हम क्या उसे उतना ही सरल, सहज और सुंदर रहने देते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें हम उसमें भर देते हैं। अब देखिए, जीवन है तो उसके साथ जुड़ी हुई जो बाकी सारी प्रोसेस होती हैं भाई, चाहे वो हमारा जॉब हो, पढ़ाई हो, बाकी फैमिली हो या जिम्मेदारियां हो, हम उनसे नहीं भाग सकते हैं। लेकिन जब हमारे लिए कोई उपहार लेकर आता है तो जितना हमें अच्छा लगता है, बस ये समझ लीजिए कि जो हर दिन 10 मिनट होंगे वो एक उपहार ही होगा जो हम खुद अपने आप को देंगे।
1: आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल एक सोचने वाली बात हमें ये बता दी है कि जैसे अगर कोई हमें उपहार दे और हमें कितना अच्छा लगे, वैसे ये चीज़ हम खुद के साथ क्यों नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको दिन में केवल 10 मिनट ही तो देने।
0: बिल्कुल। और अगर आपको दोस्तों 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लग रहे हों तो आप बस 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर समय 5 मिनट हो या 10 मिनट हो उससे नहीं है, बात है कि क्या हम खुद को थोड़ा ऊपर के पेडेस्टल पे रख पाते हैं। अब अगर आपको लग रहा होगा कि सेल्फ लव यानी कि हमने अपने आप को ही सबसे ज़्यादा

0: हियरिंग सेन्सर्स म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो.
2: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो.
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक.
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल.
2: म्यूजिकली योर्स.
3: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां जो लफ्जों में.
4: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे ना कि जब सेल्फ लव की, तो सेल्फ लव का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना. सिर्फ अपने बारे में अच्छा ही कहना या अच्छे होने का दिखावा करना नहीं होता है, क्योंकि जब हम अपनी कमियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम उन्हें सुधार भी पाएंगे.

0: अनूप, आज हम जो बात कर रहे हैं सेल्फ लव की, या खुद को भी चुनने की, या खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालने की, और ऐसे ही कुछ एक मैसेज भेजा है प्रकाश शिंदे ने, लिखते हैं कि खुद से प्यार करना सीखे, बाकी सब आसान हो जाएगा। दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। आपका सबसे अच्छा साथी आप खुद हैं। खुद की पहचान बनाइए, दूसरों से आपकी पहचान मत तय कराइए। और ये जो गाना अभी हमने सुना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का, शंकर महादेवन की आवाज़ में, देर लगी लेकिन मैंने अब है जीना सीख लिया, ये गाना उनका भी फेवरेट गाना है। और ऐसी ही कुछ बात लिख रहे हैं विजेंद्र खटोल, और लिखते हैं कि भी आप लोग बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं और साथ ही साथ गाने भी बहुत ही खूबसूरत।
1: अमिता, ये जो प्रकाश जी हैं, इनकी बातों से एक चीज़ मुझे याद आई, जैसे हम कभी प्लेन में बैठते हैं, विमान में, तो वहाँ पे भी हमें बताया जाता है कि किसी भी स्थिति में दूसरों की मदद करने से पहले स्वयं का मास्क खुद पहने, तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी के जीवन में बदलाव लाएं और काफ़ी अच्छे से लोगों के साथ मिले जुले और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़े, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपने आप से भी प्यार करें।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दोस्तों, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊंगी कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बस थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालिए, क्योंकि लव यू जिंदगी की शुरुआत जो होती है ना, वो शुरुआत होती है हमारे खुद से। जीवन के इस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।
1: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

दोस्तों आपको बता दें कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे नागपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार और लेकर कार्यक्रम अंदाज़े बयां। हम लौटेंगे ठीक 6:15 पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या सभी लिसनर्स को। शाम के 6:15 हो चुके हैं। मैं हूं आरजे अनूप और मेरे साथ बनी हुई है आरजे अमिता। और दोस्तों 107.1

98.1 FM रेनबो पर समय हो चुका है हमारे अगले शो अंदाजे बया का। आज का हमारा सफर कुछ खास है। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जो केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि हमारे मन का दरवाजा भी है। ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं और ये हमारे दिल का आईना भी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी आँखों की।

बड़ा खूबसूरत ये गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आज हम बात कर रहे हैं अंदाज़े बयां में आँखों की। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि अक्सर हम झूठ तो बोल देते हैं पर हमारी आँखें झूठ नहीं बोल पाती। बिना एक शब्द कहे वे सब कुछ कह जाती हैं जो शायद हमारी ज़ुबान भी कभी ना कह पाए। फिर वो गुस्सा हो, प्यार हो, आवेश हो या फिर हो

सुस्ती या फिर नींद, सब कुछ इन दो छोटी सी आंखों में न केवल समाता है बल्कि झलक भी जाता है। प्यार से प्यार पर फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, जो उन मासूम आंखों ने दिए थे, जो उन मासूम आंखों ने दिए थे, वो धोखे मैं आज भी खा रहा हूं।

0: कितना प्यारा हमने गाना सुना अभी, और हम यही कहना चाहते हैं अभी कि आंखें कितनी प्यारी होती है ना दोस्तों। और जब भी हम बात करते हैं किसी के बारे में, तो हम उसकी सारी चीज़ों के अलावा कहते हैं कि उसकी आंखें कितनी प्यारी है और कितने प्यारे से उसके नयन हैं। दोस्तों, हैरान होता हूँ सोचकर आंखों में समाए उस जादू के बारे में, जिसने न केवल भारत में पर दुनिया भर के कवियों और शायरों की कलम को अपना दीवाना बनाया हुआ है। क्या कहती हैं अमिता?
1: बिल्कुल। और अनूप, कहते हैं ना कि दिल जो है उसका झरोका होती है आंखें। दिल में जो भी बात चल रही है, जो भी जज्बात चल रहे हैं, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो या फिर हो नींद, हमारी आंखें और आंखों के उन झरोखों से कोई भी बात जो है वो छिप नहीं सकती है, हर चीज बयां हो जाती है।
0: बिल्कुल। और आप खुद ही बताइए अमिता, कि कैसे हम किसी को अगर पढ़ना हो तो उसके चेहरे को देखते हैं, और सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसकी आंखें।
1: बिल्कुल। और उनकी आंखों को देख करके ही हमें ये भी कई बार पता चल जाता है कि उन आंखों में हमारे लिए अपनापन है या फिर थोड़ी सी दूरी है।
0: बिल्कुल। और अगर ये सोचें तो यह पूरी दुनिया भर में जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, यह उनकी आंखों की ही खूबी है, जो दुनिया को देखकर और दुनिया में अलग-अलग आंखों में समाए हुए प्यार और दर्द को देखकर जिन्होंने अपनी कलम को एक दिशा दी, और यही बात है कि उनकी कलम को एक गहराई भी मिली। और अगर मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करूं कुछ, तो ये क्या खूब कहा है अख्तर होशियारपुरी जी ने, क्या खूब कहा अख्तर होशियारपुरी जी ने, कि लोग नजरों को भी पढ़ लेते हैं, लोग तो नजरों को भी पढ़ लेते हैं, अपनी आंखों को झुकाए रखना।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: और अमिता, इसी बात पर हम चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से अगले गाने पर। और
1: बिल्कुल बिल्कुल अनूप, हम अपने श्रोताओं को गीत भी सुनवाएंगे। और एक और बात भी जो इस वक्त मुझे याद आ रही है, एक इंग्लिश में जो एक कोट है, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर।
0: ओ यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे दर्शक भी, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो भी इस चीज़ को काफ़ी समझदारी से और बिल्कुल ही खूबसूरती से हमसे कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारी बात हम कह रहे हैं। जैसे प्रकाश शिंदे जी कहते हैं कि शेर की आंखें देखूं तो हिम्मत नज़र आती है, लोमड़ी की आंखें देखूं तो चालाकी नज़र आती है, कितना बोल जाती है ये आंखें कि माँ के आंसुओं में भी प्यार देख लेती है। कितनी प्यारी बात है ये अमिता।
1: सच
0: देखिए,
1: में।
0: ऐसे ही राजेंद्र परमार जी, पंकज माहौल जी, अशोक पाटिल जी और प्रणव शिंदे जी, सब अपने अपने तरीके से हमको बता रहे हैं कि आंखों के इशारों पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। और कह रहे हैं कि अमिता जी, आपका शो प्रस्तुत करने का अंदाज बेहद ही खूबसूरत है।
1: वैसे अंदाजे बयां कार्यक्रम दोस्तों आप सुन रहे हैं, और अंदाजे बयां कार्यक्रम में हर बार हम यही कहते हैं कि हर बात कहने का और हर एक व्यक्ति के बात कहने का अलग होता है अंदाजे बयां। और अंदाजे बयां बात इस कार्यक्रम में और भी बातें होंगी, और भी गीत हम सुनेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो 107.1 एफएम। मैं हूं आरजे अनूप, मेरे साथ बने हुई है आरजे अमिता। अमिता, कैसा लग रहा है आपको? आज हम आंखों की बातें कर रहे हैं।
1: आंखों की बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ अनूप ये भी बताते चलूं हमारे सभी लिसनर्स को कि अनु बहुत ही अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताते चले हमारे सभी लिसनर्स को कि अब आप जब चाहें तब एफएम रेनबो मुंबई सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के जरिए। और आप कर रहे हैं आंखों की बातें, और बस दो लाइनें कहना चाहूँगी कि आंखें भी क्या चीज़ होती हैं, दिल में उतर जाती हैं, बेजुबा होकर भी वो हर बात कह जाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है। और प्रणव शिंदे जी कह रहे हैं कि आंखें हमारे जीवन का वो आईना है जो ना केवल बाहरी दुनिया को देखने में मदद करती है, बल्कि हमारे भीतर के हजारों अरमानों और जज्बातों को भी बयां करती है। खूबसूरत आंखों का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि जहाँ शब्द खामोश हो जाते हैं, वही आंखें अक्सर दिल का हाल बयां करती हैं। कितनी प्यारी बात कही है आपने, धन्यवाद। और विजेंद्र घटोल जी कह रहे हैं कि आपने जो गाने बजाए जादू भरी आंखों वाले, ये बहुत ही उन्हें अच्छे लगे हैं। और एक और लिसनर हमें एक जान निसार अख्तर का बेहतरीन शेर साझा किया है हमारे साथ। आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगती है। क्या बात है राकेश माथुर जी, क्या बात है।
1: और हमारे एक और लिसनर है माफ कीजिएगा, हमारे एक और लिसनर है और उन्होंने भी ये मैसेज किया है, सिद्धार्थ ने मैसेज किया है चेंबूर से, और वो लिखते हैं, दिल को संभाल के रखा था हमने जमाने के नजरानों से, दिल को संभाल के रखा था हमने जमाने के नजरानों से, कमबख्त आंखों ने तुम्हारी हमें आशिक बना दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है। और राजेंद्र परमार जी अपना कहते हैं कि वी शांताराम जी ने एक फिल्म भी बनाई थी, दो आंखें 12 हाथ, और वो कहते हैं कि वह भी एक बेहतरीन फिल्म है। जी हाँ, देखिए कि हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि आंखों के नाम पर कई गाने बने हैं, कई फिल्मों के नाम भी आए हैं। तो हम यही आज बात कर रहे हैं अमिता कि देखिए, ये सिर्फ हमारे शरीर का एक अंग नहीं, बल्कि हमें अपने आप को इजहार करने का एक इतना प्यारा माध्यम जो दिया है बनाने वाले ने, और अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें तो हम कुछ बयां भी कर सकते हैं और कुछ पढ़ भी सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं?
1: वैसे अनूप, आंखें तो बयां कर सकती है, लेकिन उन आंखों को पढ़ने वाला भी तो चाहिए।
0: अरे कितनी प्यारी बात कह दी आप। आपकी जिंदगी में ऐसे कोई हो जो आपको आपकी आंखों से ही पढ़ ले, और देखिए हमारे काफी ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ उनसे आंखों ही आंखों में जो बात कर जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसकी अपनी एक खूबसूरती है।

जी हाँ दोस्तों, जीवन है तो प्यार है, दर्द है, बिछड़न है, हार है, जीत है, गम है, जोश है, उत्साह है, गुस्सा है और माफ़ी भी है। अनेक रस है दोस्तों, क्यों है ना। मतलब आज जो हमने बातें करी उससे हम समझ सकते हैं कि आँखों में कैसे एक संपूर्ण जीवन समाया हुआ है। बस अब हम पर है कि कैसे हम अपनी आँखों से कुछ बयां करें या किसी और की आंखों में जो बयां हो रहा है उसे पढ़ें। चलिए दोस्तों, समय हो चला है हमारे इस शो में आपसे विदा लेने का और ठीक 7 बजे मिलेंगे हमारे अगले शो हम तुम लिसनर्स चॉइस में, जहां आप हमें भेज सकते हैं वो गाने जो आप सुनना चाहते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071। जाते जाते सुनाता हूँ जान निसार अख्तर की कलम से एक बेहतरीन नगीना। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, पर तेरी आँखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे।

आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 FM। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार और हम आपसे जुड़ेंगे 7:10 पर हम तुम में, जहां आप अपने गानों की फरमाइश हमसे कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। शाम के ठीक 7:10 का वक्त, तो मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता और मेरे साथ हैं आरजे अनूप। और फिलहाल कार्यक्रम शुरू करते हैं हम तुम, जहां पूरी होती है आपकी पसंद यानी कि आपकी रिक्वेस्ट किए हुए गाने जो पहुँचाते हैं हम आप तक। और आज कार्यक्रम का ये पहला गीत बहुत ही सुंदर सा, वन ऑफ माय फेवरेट, कटी पतंग फिल्म का ये गाना। और इस गाने के साथ किन की हो रही है फरमाइश पूरी बताऊंगी आपको इस गीत के बाद।

0: ये शाम मस्तानी बहुत ही खूबसूरत गाना, इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी विरार से जोसेफिन माइकल ने, अंधेरी ईस्ट से मोलिका सूत्रधर ने और मुंबई से अरुषि पोद्दार ने।
1: और अब जो अगला गीत हम सुनने वाले हैं उसकी पसंद आई है और पसंद भेजी है दीपा पालकर ने। और इसी पसंद में एक और नाम जुड़ रहा है, फिरोज सिंह पोरिया का।

0: या मुंबईच्या इतिहासावर लिहिलेल्या पुस्तकांचा मी लेखक. आपली मुंबई आणि मुंबईच्या रस्त्यावर पडलेला पायाने सहज उडवलेला दगड ही इतिहासाचं भांडार आहे. या दोन्ही पुस्तकातून आपल्याला मुंबईचा इतिहास उलगडतो. त्याचंच क्रमशः वाचन येत्या 10 मेपासून आकाशवाणी मुंबईच्या FM रेनबोवर सकाळी 7:45 आणि सकाळी 9 अस्मिता वाहिनीवर आपल्याला ऐकता येईल. आपण अवश्य ऐकावं आणि मुंबईच्या इतिहासाचा आनंद घ्यावा.
1: शाम के ठीक है 7:22 का वक्त. दोस्तों सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम ओनली ऑन FM रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स. और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता. और पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूं कि आपकी पसंद के गाने आप तक ज़रूर पहुंचे. और अगला जो गीत है उसकी रिक्वेस्ट आई है राजकुमार सोनी और हिमांशु शाह की तरफ से. जस्ट इमेजिन करिए कि आप गाड़ी चलाते चलाते अपने घर की ओर जा रहे हैं और FM रेनबो मुंबई सुन रहे हैं और वहाँ पर आपका पसंदीदा गाना प्ले हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए. बस कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ FM रेनबो मुंबई के स्टूडियो में.

सुरेश वाडकर की आवाज़ में उत्सव फिल्म का ये गीत, तो जिसकी रिक्वेस्ट हमें भेजी पुणे से सुहास और सविता पवार ने, साथ ही साथ राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा ने। और दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म कल हो ना हो इस फिल्म से, और इस गीत की रिक्वेस्ट भेजी है हितेंद्र दास ने असम से, और साथ ही साथ दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा भी इस गीत को सुनना चाहते हैं।

लापता लेडीज से ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और इस गीत की रिक्वेस्ट भेजी सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित कार्तिक यादव ने, और साथ ही साथ इसी पसंद में एक और पसंद जुड़ी है राकेश माथुर की।

0: सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम ओनली ऑन एफएम रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स. और यहाँ मैं हूँ आपके साथ, आपकी आज दोस्त समता. और हम तुम ये जो कार्यक्रम होता है, ये होता है आपकी पसंद के गीतों को सुनने का कार्यक्रम, जहाँ पर हम कुछ भी ज़्यादा ना बोलते हैं ना कहते हैं, हम बस आपकी पसंद के गाने आप तक पहुँचाते हैं. और अगला जो गीत है वो आ रहा है रामलीला फिल्म से, और पसंद किया है छत्तीसगढ़ से प्रिया ने, साथ ही साथ अमरावती से पंकज मोहोड़ ने. प्रवीण की भी पसंद जो है इसमें जुड़

रही है, इंदौर से पसंद है अजय साखरे की, और साथ ही साथ इसमें एक और नाम भी जुड़ रहा है रजनीकांत रघुनाथ पाटिल का। रामलीला फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्तों, यूं तो स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि बस अब कार्यक्रम हम तुमको समेटने का भी समय आ गया है, लेकिन इससे पहले कि मैं आप सभी से टाटा बाय बाय कहूँ, बता दूँ आपको कि बहुत सारे हमारे लिसनर हैं जो आज हमारे साथ बने रहे और पूरा पूरा साथ दिया इन्होंने हमें, और बहुत सारे लोगों की मुझे पता है कि फरमाइश पूरी हुई है, और बहुत सारे ऐसे भी हमारे लिसनर हैं जो उन्हीं सारी फरमाइशों में उन्होंने अपनी भी पसंद ढूंढ ली है। प्रणव शिंदे हमारे साथ बने रहे, साथ ही साथ संजय पाटिल का भी मैसेज आया। वेलापुर से दत्तात्रेय आड़त ने भी हमें मैसेज किया, और वाडवन से श्रेया राउत, मिलेश, गजानन राउत का भी हमें मैसेज आया, और मैसेज आया मंजरी पाटिल का। साथ ही साथ दादर से हमें मैसेज किया बाबा ने, और अशोक पाटिल भी हमारे साथ बने रहे, और राजेंद्र परमार ने भी हमें मैसेज करके अपनी पसंद भी बताई, और साथ ही साथ कार्यक्रम में कौन कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगी वो भी उन्होंने बताया। दिग्दर्शन और कविता का भी मैसेज आया मेरठ कैंट से, साथ ही साथ प्रवीण और इंदौर से अजय साखरे ने भी हमें मैसेज किया। आसाम से हितेंद्र दास हमारे साथ बने रहे, वहीं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा ने भी हमें बराबर से साथ दिया, और हीरामणि वर्मा और इनके सभी परिवार और दोस्तों ने भी हमें सुना है और साथ ही साथ मैसेज भी किया है। और ये हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और साथ ही साथ संजय दर्शन ने भी हमें मैसेज किया। दीपा पालकर, मीना और ध्वनि टोपी वाला, और ध्वनि के साथ साथ हैं छाया टोपी वाला, इनका भी मैसेज आया हमें, और मैसेज आया राकेश माथुर का। साथ ही साथ नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने भी मैसेज किया, और लिखती हैं कि भाई माय रेडियो माय लाइफ, और लिखा है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ गाने भी उतने ही पसंद आ रहे हैं। श्रीधरन बालचंद्रन ने भी हमें मैसेज किया, और मैसेज किया है प्रिया ने भी और फिरोजीगंज पुरिया ने भी। दोस्तों, और अब जो अगला गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, वो मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ मेरी, ना सिर्फ अनूप की, बल्कि हम सभी की बहुत सारी यादें जो है ना वो ताज़ा कर देगा। एकदम एक नॉस्टैल्जिया कहते हैं ना, ये गाना हमें बहुत सारी उन्हीं यादों में ले जाएगा, और ये गाना है आर्यंस का, और इस गाने को रिक्वेस्ट किया है अकोला से विजेंद्र घटोल और मीना ने।

0: और दोस्तों इसी गीत के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी आरजे दोस्त अमिता और
1: अनूप, आरजे अनूप,
0: बिल्कुल, और इसी वादे के साथ कि दोस्तों बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात। और हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छी तरह से ध्यान, और बता दें आपको कि ठीक 8 बजे आरजे कीशा होंगी आपके साथ लेकर कार्यक्रम रॉक विद द चौक।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की

0: प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
0: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
0: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
0: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

0: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर

0: महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। यह सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores.
3: Foreign shores tak cotton ka puri supply chain ko maintain karna.

0: ₹65 प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ ₹365 पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश

मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगून बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपए मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया है रंगे महफिल की खूबसूरत महफिल में आपका साथ देने का। जी हाँ, तो प्रवीण शर्मा लेकर आ गया है आपका खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है रंगे महफिल। तो कबूल फरमाइए मेरा प्यार भरा आदाब।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से

तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं, 100 बार करो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक।

0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, जब एक बार कोई हमारी नजरों में बस जाता है ना, तो फिर वो सदा सदा के लिए हमारा हो जाता है। जब कोई हमारी नजरों के रास्ते से हमारे दिल में उतर जाता है, तो वो हमेशा के लिए हमारा बन जाता है और हम उसके बन जाते हैं। हमारे दिल की आरजू तभी पूरी होती है जब हम अपने दिलबर का दीदार कर पाते हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल।

नजर से गुफ्तगू खामोश लब तुम्हारी तरह, नजर से गुफ्तगू खामोश लब तुम्हारी तरह, गजल ने सीखे हैं अंदाज सब तुम्हारी तरह। जो प्यास तेज हो तो रेत भी है चादरे आब, दिखाई दूर से देते हैं सब तुम्हारी तरह।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, इस्तकबाल, खैर मकदम है। आप इस वक्त तरंगी महफिल के खूबसूरत महफिल मेरे दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। तो देते रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए बेहतरीन गजलें आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

अजब हालात थे, अजब हालात थे। यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। समंदर के सफर में इस तरह आवाज दो हमको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए।

दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो दिलों को आपस में जोड़ता है, जो दो प्यार करने वालों को करीब लाता है। इश्क के सागर पर जब हमारे ख्वाबों की कश्ती अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है ना, तो उम्मीदों के लाखों दिए जगमगा उठते हैं और हम अपने को, अपने हमदम को अपने पास होने का एहसास करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा हमदम बिल्कुल हमारे पास बैठा है और हम उसे एक टक निहार रहे हैं।

कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी की आंख में रहकर संवर गए होते। गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूब के हम लोग मर गए होते।

साहब, फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है अगली मुलाकात तक इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी न किसी मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने

बाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 और 38 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। दोस्तों 1973 में एक फिल्म आई थी सौदागर। आइए आपको सुनवाते हैं उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म लाड साहब का ये गीत।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है सावन की घटा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: बारह बजकर 39 मिनट और 14 सेकंड हुए हैं।

0: सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी FM रेनबो।
2: आ दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म शर्मिली का ये गीत।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बॉबी फिल्म का गीत आइए सुनते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और प्रोग्राम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया फिल्म धूल का फूल का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे।

0: आकाशवाणी।
1: 1:05 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: 0.25% के लिए किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी है।
0: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम TVK के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1.10 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। वहीं अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत और अमरीका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बहुत करीब हैं। उन्होंने बताया कि समझौते के अंतर्गत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंचा। ये यात्रा 9 मई तक चलेगी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता शामिल है। मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि अपने यात्रा के दौरान ये नेता ताइवान की सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंग गनबा मेईती पारशांत मोहम्मद ने अपने बेहतरीन जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेलोडीज का। तो लीजिए आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का। प्रोग्राम में मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक आपके लिए कुछ खूबसूरत से गीत।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:05 और 52 सेकंड्स और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट

0: கடல் சி தேரி போலி जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

श्रोता सुन रहे थे ये खूबसूरत से गीत कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365

0: इकाइयों को भी मंजूरी दे दी।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट दो प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है, और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम TVK के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और नई तकनीकों के कारण हालात जटिल हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,000,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंगनबा मेईती, पारशांत मोहम्मद यासिर और निवेश पाल ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। रणवीर को वॉक ओवर से जीत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:05 और ये समय है कार्यक्रम सारेगामा। तो लीजिए, आइए सुनते हैं ये गीत।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

सारेगामा ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।